0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनाइबाट आउँछ गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

कार्यक्रम सुर संगीत हरेक सोमबार बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म सुन्न नभुल्नुहोला। प्रस्तुता ज्ञानो अधिकारीको।

0: अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम धन्यवाद बिहानी।
1: यो समय हो धन्यवाद बिहानी।

कल तक जो साया था आज वो धूप बन गया। वक्त का ये समंदर हर निशान को निगल गया। तू जिस शोहरत की आड़ में खुद को छुपाता है, वक्त आने पे वो नाम भी धुंधला पड़ जाता है। वक्त रहते अपनी तौबा का दरवाजा खटखटा ले, क्योंकि जब सांस का पंछी पिंजरा छोड़ देगा तो फिर पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। यीशु तुझे बुला रहा है उस सुकून की तरफ जो कभी खत्म नहीं।

हाथों में क्या रखा है। ये दुनिया फानी है, यहां हर मोड़ पे धोखा है। अपनी रूह को उस मालिक के हवाले कर दे, क्योंकि उसकी बनाई जिंदगी का असली झोंका है। आज का दिन तेरा है, कल का पता नहीं। अपनी जिंदगी के पन्ने पलट और देख के तूने उस मालिक के लिए क्या लिखा है। मिट्टी से पहले

0: गुड न्यूज एफएम 105.1 MHz।
1: आदरणीय श्रोता, अब तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम गोस्पल एक्सप्रेस।

0: पैदल यात्रीलाई बाटो काट्न दिऊ।
1: सवारी साधन चलाउँदा मोबाइल प्रयोग नगरौं। बालबालिकालाई सड़क नियम सिकाऊ र सुरक्षित स्थानमा हिँड्न प्रेरित गरौं।
2: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।